लेकिन गीत मजा देगा। शब्बीर अहमद हमारे पहले कॉलर हैं, सबसे पहले आपका मैसेज आया, सलाम पेश किया है सभी के लिए। सोनल थैंक यू। ओ प्यार अली भाटिया थे। At times our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Pyar Ali Bhatia, bahut shukriya. Our life is beautiful when attached to nothing, connected to everything. Sana, shukriya aapka. Amir Ali Rana. कहते विशिंग ऑल द बेमिसाल अंदाज फैमिली वेरी गुड मॉर्निंग। गुरूर, समझ ये जो एरोगेंस होती है। किसी ने बर्फ से पूछा, तुम हर वक्त इतनी ठंडी कैसे रहती हो? बर्फ ने अच्छा जवाब दिया, मेरा माजी भी पानी और मुस्तकबिल भी पानी, यानी पास्ट और फ्यूचर दोनों पानी है। मेरा माजी मतलब पास्ट, मेरा माजी भी पानी और मुस्तकबिल फ्यूचर भी पानी है। तो गर्मी किस बात की, हाँ जब पानी ही है तो गर्मी किस बात की। उसी तरह इंसान का माजी भी मिट्टी और मुस्तकबिल भी मिट्टी है, तो फिर गुरूर कैसा। अमीर अली राना। और भरत गंगाराम, सोमवार की शुभकामनाएं वंदनीय परवीन जी। ट्रेवलिंग टू वेल्स, महाकाली मंदिर, ईस्ट एफएम लाउड एंड क्लियर। क्या बात है, वेल्स जा रहे हैं, ईस्ट एफएम साथ लेके जाते हैं भरत गंगाराम भी, शिकोत्राज की तरह। बहुत अच्छी बात है। चंद्रिका वासंत गोसाई, आप भी सुन रही हैं और कहती हैं पहला गाना रुखसाना शबीर, कहती हैं इट इज सो गुड टू बी ट्यून्ड इन विद ऑल द ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग टू यू। जया प्रदा का ये गाना था। अच्छा, ये पहला जो गाना था जया प्रदा पे होगा शायद। खैर, गुलाम अली

0: बादशाह गुलाम अली साहब, अब देखते हैं कि सलमा क्या कहती
1: है। किसी शायर ने क्या अर्ज किया है, दिल अमीर था मुकद्दर गरीब था, अच्छे हम थे बुरा नसीब था, कोशिश करके भी कुछ ना कर सके हम, घर भी जलता रहा समुंदर भी करीब था, हर मोड पर हालात ने आजमाया हमें, जितना संभलना चाहा उतना ही गिराया हमें, कसूर किसी का नहीं था, शायद बस वक्त और तकदीर ने हर बार हराया हमें। शुक्रिया, सुबह का प्यार सलाम सौमा आमद किसुम।
0: चलिए, किसी को तो कसूरवार ठहराना था तो तकदीर को सही। अब क्या करें, जब कुछ बुरा होता है तो समझ कहाँ का इंसान सोचता रहता है, ये नसीब था, ये तकदीर थी, खुदा था जिसने सब कुछ लिखा था। खैर, ML विश्वकर्मा, माउथ माइंड मूड मनी मैनर, इनको हमेशा काबू में रखो, अपने माउथ को मतलब वो जो कहते हो उस पर गौर करके। अब कहते हैं कि देखो, बात यह है कि कैन स्मेल वन ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्रॉम 3 miles। आई थिंक शार्क्स हैं कोई। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ योर मैसेज इज हिडन, नजर नहीं आ रहा कि ऊपर शार्क की है तस्वीर। तो इट कैन स्मेल अ ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्रॉम 3 miles, 300 teeth नेवर स्टॉप्स ग्रोइंग। ये शार्क ही हो सकती है। बहुत खूब, अब देखते हैं चंद्रिका वासंत गोसाई सुन रही हैं कि
2: नहीं। परवीन जी, बहुत मजा आ गया गजल सुनने में। गुलाम अली बहुत बहुत पसंद है हमको ये गजल। थैंक यू वेरी मच चंद्रिका वसंत गोसाई।
0: बहुत खूब चंद्रिका, एंजॉय करती हैं प्रोग्राम।
3: प्रवीण जी, चुपके चुपके रात दिन, ये सेठ गजल गुलाम अली ने गाई है, और जिसको हसरत मोहनी ने लिखी है, और जिसकी धुन गुलाम अली खुद ने बनाई है। ये ब्यूटीफुल गजल सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
4: No one plays more of the beats you dance to but East FM.
5: East FM,
4: Kenya's premier
5: Asian mix.
6: It's 10:18.
7: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
8: Ready to study abroad? Your journey starts at the IDP Study World Expo, Golden Tulip, September 12th, 10 a.m. to 4 p.m. Meet universities from Australia, UK, Canada, Ireland, USA, and New Zealand. Explore courses, tuition discounts, and expert guidance. The first 3 IELTS bookings receive a 5,000 shilling shopping voucher. Register at idp.com/Kenya and transform your world.
9: Shape your future at UniServe Education September Fair. Meet representatives from over 100 top universities worldwide. Explore undergraduate and postgraduate opportunities, scholarships, and life abroad. Eldoret, Rupa's Mall, Tuesday, 22nd September. Mombasa, Bliss Resort, Wednesday, 23rd September. And Nairobi, JW Marriott, Saturday, 26th September from 10 a.m. Entry free. UniServe Education. Master your own destiny.
4: Kenya's premier Asian mix means always playing the very best.
5: East FM.
10: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: शरीफा फ्रॉम उंगाटा रुंगा ये कहती हैं कि ये जो गीत है इस पर डांस किया था श्री देवी ने, कमाल कर दिया था, वेरी गुड डांसर श्री देवी, अच्छी डांसर थी। अब सैली डार फ्रॉम लंदन कहती हैं कि पता है क्या, बचपन में पेंसिल होती है आपके हाथ में, जैसे ही आप बड़े होते हैं इस पेंसिल को हटाकर पेन दे दिया जाता है आपको, क्यों? ये दिखाने के लिए कि जो है, जस्ट टू मेक यू रियलाइज नाउ इट्स डिफिकल्ट टू इरेज व्हाट यू राइट। पेन के साथ तो नहीं ना इरेज हो सकता, पेंसिल के साथ तो हो जाता था, वो बचपन था, वो जवानी थी, बहुत खूब। और फातिमा कासम अली ने कहा कि अभी किसी ने कहा कि जया प्रदा, ऑफ कोर्स नॉट, कहते सलमान खान और चांदनी थी इस फिल्म में, सनम बेवफा, आई एम श्योर यू आर राइट। सो समझ, जब आप दें जब आप देते हैं ना कोई इंफॉर्मेशन तो सोच के, क्योंकि हमारे माहिर हैं बड़े लिसनर्स जैसे कि फातिमा कासम अली, ग्रेट फातिमा। और आया है कुलवंत सारोए से भी यही, मेरे ख्याल है उन्होंने भी यही कहा है कि ये गाना इन पर नहीं फिल्माया गया था, क्या बात है, बहुत अच्छे फॉर करेक्टिंग द लिसनर जिन्होंने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। समझ, सिंगापुर के वज़ीर आज़म ने क्या किया है, और बहुत अच्छा काम किया है। कहते हैं ना कि निप इट इन द बड, ये कभी सुना हुआ है ना आपने, तो वो यही काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आगे चलकर।
1: अरे
2: चुपके से दिल दे दे,
1: नहीं ते
2: नहीं ते

और जगदीप नांद्रा इज इन लंदन ट्यून्ड इन, मजा ले रही है बेमिसाल अंदाज का, वेरी गुड. और रूपल कहते हैं न्यू डे न्यू वीक ओसम गजल. जी हाँ, गुलाम अली की रूपल. और चिराग पटेल फ्रॉम कैरेटीना, आप बताएं आपका वीकेंड कैसा था? होप ओके, माइन वॉज अ रिलैक्सिंग वन. हम हमेशा कहते हैं कि चिराग पटेल यहाँ से वहाँ जाते हैं, हम उनको एनवी करते हैं. वो कहते हैं नहीं, मैं घर ही बैठा हुआ था मोस्ट ऑफ द डे यस्टरडे. अच्छा ठीक है. और आफ्टर लिसनिंग टू चूड़ियाँ खनक गई बाय लता, आई काइंडली रिक्वेस्ट आसमां बाय आशा भोसले, 2019 बायोग्राफिकल फिल्म साउंड की आंख. अच्छा ओके, मैं देखती हूँ. हालांकि मैंने ये सिर्फ पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, मैंने कभी सुनाया नहीं और ना ही कभी सुना है. करते हैं कुछ ना कुछ. यासर, और आपकी हिस्ट्री का कहाँ गया है?

0: यूसुफ बट भी आ गए हैं, वो तलत का इंतजार करते हैं, पर आजकल तलत जरा आहिस्ता चलने लगे। और यासर जो आपने फरमाइश की है 2019 का, वैसे वो हमारे पीरियड में नहीं आता बेमिसाल अंदाज के, फिर भी मैंने लगाया है आगे, देखते हैं कि आइंदा क्या होता है, कि आप इस तरह की फरमाइश कर पाते हैं कि नहीं। और मंजुला विश्वकर्मा का मैं अभी अभी सुनाती हूँ मैसेज, लेकिन ब्रेक भी लेनी है। चलिए
1: East FM, Kenya's premier Asian mix. Spice with the perfect blend of your favorite music. East FM, Kenya's premier Asian mix. Your

0: और अब देखते हैं कि क्या लिखा है मंजुला विश्व ने कहा है मंजुला विश्वकर्मा ने।
1: परवीन जी, बिछड़ते वक्त मेरे सारे ऐब गिनाए उसने, बिछड़ते वक्त मेरे सारे ऐब गिनाए उसने, सोचता हूँ जब मिला था तब कौन सा हुनर था मुझमें। शुभ प्रभात।
0: क्या बात है, I want to play it again।
1: परवीन जी, बिछड़ते वक्त मेरे सारे ऐब गिनाए उसने, बिछड़ते वक्त मेरे सारे ऐब गिनाए उसने, सोचता हूँ जब मिला था तब कौन सा हुनर था मुझमें। शुभ प्रभात।
0: वेरी गुड। जब मिला था तब तुझे कोई ऐब नजर नहीं आए, कौन सा हुनर था मुझमें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे तंजिया। अब देखते हैं समय, सिंगापुर के वजीर आजम जो हैं लॉरेंस वोंग ने कहा है कि किसी नस्ल के लोगों के खिलाफ ऑनलाइन अब्यूज, समझ, ये जो है ना अब सोशल मीडिया बहुत गालियां देने में माहिर है, किसी ने भी गाली देनी होती है ना तो बस वो सोशल मीडिया का सहारा लेके शुरू हो जाता है। लेकिन सिंगापुर के पीएम ने कहा है कि वी विल नॉट टॉलरेट दिस, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीयों के खिलाफ, समझो इंडियंस सिंगापुर में रह रहे हैं, उनके खिलाफ रेसिस्ट रिमार्क्स की जांच शुरू कर दी गई है कि कौन भेज रहा है इस तरह के मैसेजेस, क्यों भेज रहा है। सिंगापुर में रहने वाले इंडियन से नफरत को हर सूरत में रोका जाएगा, क्योंकि समझ सिंगापुर जो है फॉरेन विदेश से आने वालों पर डिपेंड करती है, बहुत अच्छी इनकी इकोनॉमी है, लेकिन उस तरक्की में विदेशियों का बड़ा हाल है हाथ है। तो कहते हैं कि 60 लाख की आबादी है, 75% चाइनीज है, 15 मले हैं और 9%, ये बहुत बड़ा है, इंडियंस हैं। तो बस वोंग ने कह दिया तुम्हें बताते हैं पकड़ पकड़ के सजाएं देंगे।

0: और समय अब देखते हैं कि आगे किसने क्या कहा है. रंजन विनोद, गुड मॉर्निंग, आई एम लिसनिंग फ्रॉम लंदन, एंजॉयिंग द प्रोग्राम, शुक्रिया. शोभना और दिनेश, अ स्माइल इज अ स्पिरिचुअल परफ्यूम यू स्प्रे ऑन अदर्स, एवरीवन नियर यू बेनिफिट्स फ्रॉम इट. जी बिल्कुल. लखबीर कहते हैं, मकान और इंसान टूटकर ही नए बनते हैं. मकान और इंसान टूटकर ही नए बनते हैं. वफा ढूंढने निकला था, रास्ते में वाईफाई मिल गया, वही रह गया. बिल्कुल सही, कमाल है.
1: रवीन जी, आपने अभी गाना बनाया आसमां, ये गाना आशा भोसले ने गाया है, उस जिसको राजशेखर ने लिखा है, उस जिसकी धुन विशाल मिश्रा ने बनाई है. ये ब्यूटीफुल गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
0: या बट 2019 के संगीत को मैं नहीं छू सकती, वो और प्रोग्राम्स में है, और आप उनके प्रोग्राम जरूर सुनिएगा जो 2019 का संगीत भी बजाते हैं.

0: समझ, कुछ चीजें मैंने आपको पढ़कर सुनानी है, समझ लीजिएगा कि कुछ मैसेजेस हैं, कहीं लिखे हुए हैं, किसी ने यहां वहां से खुद तो नहीं लिखे, लेकर लिखे हैं, पर कहां लिखे हैं वो आपने मुझे बताना है। तो समिन आस्ता आस्ता हम सुनते हैं कि ये है क्या। पहला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अच्छा, और दूसरे पे लिखा है मां का आशीर्वाद। फिर एक पर लिखा है डिपर एट नाइट। ओके, फिर हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। और समझ, ये ह्यूमरस भी हैं, मतलब कि हंसी भी आती है, पर ये कहां लिखे हैं ये मैसेजेस। हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, और दूसरा, शौक नहीं मैडम मजबूरी है, 10-81 चलाना जरूरी है। अब ये 10-81 नंबर है, शौक से नहीं मजबूरी से चला रहे हैं। ओके, दम है तो क्रॉस कर वरना बर्दाश्त कर। ब्यूटीफुल, दम है तो क्रॉस कर वरना बर्दाश्त कर। और मेरा भारत महान, 100 में 99 बेईमान। ये भी जोक है। ओके, लटक मत पटक जाएगा, जल्दी मचाएगा तो ऊपर जाएगा। समझ, ये कहां लिखे हुए हैं तमाम, कहां और किस देश में लिखे हैं, क्योंकि ये सब आपकी भाषा में है, इंग्लिश से मैंने ट्रांसलेट नहीं किया, जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही आपको सुनाए हैं। बस 0701-106-106 में मुझे बता दें ये कहां लिखे हुए आपको मिलेंगे।
1: With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Mark Gitau.
2: DCP leader Rigathi Gachagua has reiterated that opposition leaders will unite behind a single presidential candidate to challenge President William Ruto in the 2027 election. Speaking to Kenyans in the United States, Gachagua defended his ongoing U.S. tour, saying it will allow him make sound political decisions and strategies in the run-up to next year's polls.
3: I'm going to use my time here when I'm off. Kufikiria, kupanga panga, kuangalia hesabu na kuomba Mungu. So that nikirudi, I call my colleagues, I suggest to them, Mungu ananionesha, tukienda hii njia tunaweza faulu.
2: Former Deputy President Rigathi Gachagua has intensified his criticism of the government over the closure of Tata Chemicals operations in Magadi. Speaking to Kenyans in the United States during a church service, the DCP leader said the Maasai community must be fully involved in selecting a new investor, insisting the mineral-rich land is community-owned rather than government land. Gachagua also blamed the government for the water crisis in the area, saying the suspension of the Tata Chemicals operations disrupted water supplies to local residents.
3: Na kama kutakuwa na new players, sio William Ruto amue, ni wenye shamba. Ni wa Masai kuja kuketi na wama useme sisi tunataka kulete investment hapa, then wa Masai waulize ukija kufanya hii exploitation ya mineral utatufanyia nini.
2: Comedian and activist Eric Omondi has been arrested in Nairobi CBD while collecting signatures for his Punguza Mzigo campaign. The initiative seeks a referendum to reduce Kenya's 47 counties to 8 and abolish some positions like senator and woman representative. His Omondi speaking before his arrest.
4: Ile pesa yenye zinaenda kwa county, kwa governor, deputy governor, is enough kufanya free education kutoka primary mpaka university. Tushaongea na IBC, tumepartner nao, watakuja waratify alafu to reduce. It will happen.
2: Former Member of Parliament Margaret Wanjiru could face a difficult path in her bid to become Nairobi Governor. Political analyst Martin Andati says aligning with the United Opposition may not be enough, especially since she's not in any of the major opposition parties. He says joining the DCP and battling for the party's nomination could have been easier, but her current political position makes the race more complicated.
5: So you have Linda Mwananchi, we have Kalonzo who does not have a candidate. Then you have Gakuya who is the DCP candidate. Linda Mwananchi will not leave Babu to support Wanjiru. You need a big party stroke coalition ticket for you to be formidable.
2: Nairobi County will need a governor with both political and strong managerial skills to effectively manage its resources and people. Political analyst Martin Andati says the county controls more than 60% of Kenya's wealth, warning that electing a governor who is only a politician could be disastrous. This comes as more than five politicians expressed interest in the Nairobi's governor's seat. That's the news update on East FM.
1: East FM News. This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
6: Kenya's premier Asian mix.
7: East FM.
6: Celebrated from South Sea, Parklands to Westlands.
7: East FM.
6: Kenya's premier
7: Asian mix.
8: Bemisal Andaz with Parveen Atom.
0: और आंसर्स का सिलसिला शुरू है मुझे पता चल गया था आपको पता है क्या है ये आंसर कृष्ण सरोय आपने बता दिया है प्रफुल पटेल आपने भी हमें बताया है कि ये कहाँ है सर मुझे इतने अच्छे लगते हैं और आप भी मुझे याद कुछ याद हैं अगर आपको तो वो दे दें क्योंकि मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था शौक नहीं मैडम मजबूरी है 10-81 चलाना ज़रूरी है दम है तो क्रॉस कर वरना बर्दाश्त कर क्या ब्यूटीफुल लटक मत पटक जाएगा जल्दी मचाएगा तो ऊपर जाएगा बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर है इनमें ओके अब देखते हैं पर्दे पर सबसे पहले आपने कहा है और आप हैं कल्पना के बिल्कुल करेक्ट है आपका और आंसर एक आया है वो सुन लेते हैं
9: प्रवीण जी गुड मॉर्निंग आ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਫਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਡੱਬ ਖੜੱਬਾ
0: ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੜੇ ਹੋ ਆਪਕੋ ਯਾਦ ਹੋ ਵੋ ਵੀ ਬਤਾ ਦੇ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਤਾਏ ਹੈ ਲਖਬੀਰ बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है सोनल मोदा कहते हैं सभी पे ये लिखा होता है बिल्कुल सही और शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका जी बिल्कुल करेक्ट है और मंजुला विश्वकर्मा जहां है ये वहीं से मैंने सवाल लिया है और करेक्ट आंसर है दिनेश शाह ये सब आपको यहां लिखे हुए मिलेंगे करेक्ट आंसर बिंदु सभी को नमस्कार आंसर करेक्ट है आपका चिराग पटेल फ्रॉम कैरेटिना बिल्कुल अक्रॉस क्या आपको कोई याद है जो वहां शायद आपने जब कभी आप गए थे तो शायद आपने देखा हो तो बड़े अच्छे लग रहे हैं ये
10: प्रवीण जी नमस्कार प्रवीण जी ये मैसेज तो हमको पता है ये ना इंडिया में ना जो ट्रक होते हैं ना उसके पीछे लिखे जाते हैं और आपको पता है ये अब जो आया था ना कि हंस मत पगली प्यार हो जाएगा ये फिल्म टॉयलेट में भी प्रेम कथा में यूज हुआ था और ऋतु गुप्ता और प्रेम जी प्रवीण जी दूसरा वो सैटरडे वो टीचर डे था तो मैंने बोला चलो आज मैं अपनी करंटली टीचर को शुभकामनाएं दे दूं कि वो वैसे तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पहले मेरे पेरेंट्स थे मेरे टीचर सेकंड मेरे हस्बैंड थे तीसरा जब करंटली आप हैं मैंने प्रवीण जी आपसे बहुत कुछ सीखा है बता नहीं सकती ये आपसे ही सब कुछ जो हमारा नॉलेज इंक्रीज हुआ है क्योंकि हम तो ऐसे ही किताबें ही बंद करके बैठे हुए थे बस यही शुभकामनाएं आपको देती हूँ कि भगवान आपको अच्छी सेहत और अच्छी तंदुरुस्ती दे और आप इसी तरह आपके चेहरे पे वो भगवान हंसी लाता रहे और आप सब हम सबको हमारा दिमाग एक्टिवेट करती रहे और भगवान आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुशियां प्रदान करता रहे रितु गुप्ता
0: प्रधान क्या बात है रितु व्हाट अ मैसेज कितना इंस्पायरिंग और मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत एक मैसेज है जो आप हर साल मुझे देकर इतना इनकरेज करती हैं एक्चुअली रितु गुप्ता कितना कुछ तो मैंने आप लोगों से भी सीखा है पर ये बस मेरा मकसद था क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन था तो मैंने कहा कि आप रेडियो पर तो वो कह रहे हैं कुछ और ही करना है प्रोग्राम में मैं क्या करूं बस सोच में पड़ गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने मोल्ड किया इसको प्रोग्राम को कि जो मुझसे कहा गया था वो भी थोड़ा बहुत करना पड़ा, रेसिपीज दे दो खवातीन को जो घर बैठी हैं, वो भी किया थोड़ा बहुत, पर फिर इवेंचुअली जो बना है ना यही मैं चाहती थी। थैंक यू रितु गुप्ता, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और फातिमा कासम अली, आपने सही जवाब दिया है। यासर, बिल्कुल करेक्ट है आपका भी जवाब। और लखबीर, ओके हॉर्न प्लीज, ओके टाटा बाय। ये भी है, प्रवीण जी माय सिस्टर इन यूके इज ट्यून्ड टू योर प्रोग्राम, हर नेम इज मनजीत, लखबीर की बहन मनजीत, हमारी जानिब से अगला गाना आपको डेडिकेट करते हैं, ठीक है। और साउथ अफ्रीका चलते हैं, और कहा है कि साइड मिलने पर जगह दी जाएगी, सब का मालिक एक, फिर मिलेंगे सब का मालिक एक, साइड मिलने पर जगह दी जाएगी, सब का मालिक एक, फिर मिलेंगे। ये फिर मिलेंगे तो ऑफ कोर्स ये समय तमाम ट्रक्स के पीछे, और किस मुल्क में इतनी इंटरेस्टिंग लिटरेचर आपको ट्रक पे लिखी दी?

0: क्या ब्यूटीफुल संगीत है अश्विन दोषी.
1: यस यस, थी उषा खन्ना ने म्यूजिक दिया था.
0: ओ माय गॉड, इतनी अच्छी थी ये संगीत का.
1: यस यस यस, उषा खन्ना वाज ग्रेट पर्सन जी, लेकिन उनको बहुत चांस नहीं मिला
0: जी. बिल्कुल
1: या वो ऐसा सोचा जाता है कि उषा खन्ना वाज ट्रेन बाय ओपी नायर प्रवीण जी, लेकिन पब्लिकली कोई ऐसा नहीं एक्नॉलेज करता, लेकिन प्राइवेटली सबको मालूम है ऐसा सोच है या सोचा. ये फिल्म थी प्रवीण जी दिल देके देखो, आशा पारेख की डेब्यू फिल्म थी, साथ में थे शमी कपूर.
0: अच्छा,
1: और उषा खन्ना का म्यूजिक था और मजरूर सुल्तानपुरी के गाने, और फिल्म सुपर सुपर हिट बन गई.
0: क्या बात है, व्हाट अ गाना. म्यूजिक का तो बहुत होगा,
1: म्यूजिक कंट्रीब्यूटेड अ लॉट जी, और पिक्चर सक्सेसफुल बन गई.
0: अश्विन, अगर वो म्यूजिक डायरेक्टर्स बाकी के पसंद नहीं करते थे किसी उभरते सितारे को, तो उसको दबाना भी आसान था उनके लिए, है ना.
1: यस यस यस,
0: उसको हटा देते थे रास्ते में, रास्ते से.
1: डिपेंड कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर, कितना उनके पास कितने पावर है.
0: या
1: वो दैट मैटर,
0: राइट, बिल्कुल.
1: दे हैड ट्रेमेंडस पावर,
0: अदरवाइज दे वुड बी सो मेनी फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर्स, है ना.
1: यस यस यस यस, वो जमाना था प्रवीण जी जब भी मेल का था.
0: मेल प्रधान थे ना.
1: अभी अभी यू नो लास्ट 20 इयर्स वी सी इक्वालिटी, लेकिन वो उनसे वो समय के पहले सभी ये मेल डोमिनेटेड थी, ये होता था ना.
0: तो अब अगर इक्वालिटी आ गई है तो कितने म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं फीमेल.
1: नहीं है,
0: हमारे पास कोई जवाब नहीं है. औरतें बहुत टैलेंटेड हैं, आपने देख लिया उषा खन्ना को. फिर भी देखें, ये जो है ये मर्दों का ही है इख्तियार इस इंडस्ट्री पर.
2: दिल का

0: अच्छा क्या बात है, और अब यासर ने बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज भेजा है, और वो लिखा है किसके पीछे, उन्हीं ऑटो रिक्शा होता उसके पीछे, सिग्नल और दिल मत तोड़ो, चाय पियो और पिंपल फोड़ो। क्या बात है, सिग्नल और दिल मत तोड़ो, सिग्नल तोड़ के मतलब भी आगे मत जाओ रेड लाइट से, क्या बात है मंजुला विश्वकर्मा।
1: एक तो लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा घर भी हरा भरा, दूरी बनाए रखें, देख भाई जलने वाले जलते रहो, बुरी नजर वाले थोड़ा साइड में चल। एक और लिखा रहता है आराम से चल, घर में तेरा इंतजार हो रहा है।
0: आराम से चल, घर में तेरा इंतजार हो रहा है, वरना तू पहुंचेगा ही नहीं। क्या बात है मंजुला विश्वकर्मा, दोज वर गुड, और साइड से चल वो भी अच्छा था, क्या बात है। और पढ़ाई जीवन का आधार है, ट्रक के पीछे नंबर प्लेट पे ये भी लिखा होता है कि पढ़ाई जीवन का आधार है, आधार है, ओके वन एंड हाफ आधार, हाफ बना दिया है, क्या बात है। और समय और कोई ऐसा ब्यूटीफुल मैसेज जो हो जो आपने पढ़ा हो, आरफा फ्रॉम उंगाटा रुंगाई, वो कहती हैं पता है क्या, गाने आप कमाल के सुनाती हैं, लेकिन उससे ज्यादा अश्विन दोषी की इनपुट होती है, हम इंतजार करते हैं कि अब अश्विन दोषी क्या कहने वाले। क्या बात है।
2: It's 11:21.
3: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
4: Shape your future at UniServe Education September Fair. Meet representatives from over 100 top universities worldwide. Explore undergraduate and postgraduate opportunities, scholarships and life abroad. Eldoret, Rupa's Mall, Tuesday, 22nd September. Mombasa, Bliss Resort, Wednesday, 23rd September. And Nairobi, JW Marriott, Saturday, 26th September from 10 a.m. Entry free. UniServe Education. Master your own destiny.
5: Nairobi Sports House brings you magnificent range of Shogun fireworks to light up your Diwali. Get your Shogun fireworks and gifts from one-stop Diwali shop at Ram Mandir, Banderi Road, Parklands, also Sri Icon 3rd Parklands, Sri Gurdwara Ramgarhia Railway South Sea, Nairobi Sports House, Mombasa branches, City Mall, Niali, Faza and Likoni Mall.
6: Kenya's premier Asian mix continues.
7: This is East FM. Kenya's premier Asian mix.
8: Resham ki dori

और आज क्या हुआ तारीख में, यासर भेजते हैं ये लिखकर कि टुडे इन हिस्ट्री इन 1822, 1822 का साल था, ब्राज़ील डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, आज़ादी का ऐलान कर दिया पोर्चुगल से ब्राज़ील ने। 1906 द बैंक ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड, मतलब 100 साल पुराना है बैंक ऑफ इंडिया। इट वॉज फाउंडेड बाई अ ग्रुप ऑफ प्रोमिनेंट बिजनेसमैन, कारोबारियों ने इस बैंक की स्थापना की थी। इट वॉज लेटर नेशनलाइज्ड 1969, यानी 60 साल के बाद इसको नेशनलाइज कर दिया, मतलब सरकार ने ले लिया इसको। 1963 में बहुत ऐसी खबर आई थी, समीन हर एक के दिलो दिमाग पर छाई रही। नीरजा बैनर्थ वॉज बॉर्न इन 1963, शी वॉज द करेजियस हेड पर्सर फॉर पैन एम फ्लाइट 73, पैन एम की परवाज 73 की ये पर्सर थी। हु गेव हर लाइफ सेविंग पैसेंजर्स ड्यूरिंग अ हाई जैकिंग, समझ जब ये पैन एम का जहाज हाईजैक हुआ था तो इस पर्सर ने अपनी जान देकर लोगों को बचाया था। एंड शी पॉस्ट्यूमसली बिकेम द यंगेस्ट रिसिपियंट ऑफ अशोक चक्र, उनको अशोक चक्र दिया गया था मौत के बाद। और अशोक चक्र अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन फॉर वैलर, बहादुरी के लिए ये दिया जाता है। एंड सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड, अशोक चक्र युद्ध में बहादुरी के लिए नहीं, युद्ध से बाहर, युद्ध के मैदान से बाहर जो होती है बहादुरी और अपनी जान को कुर्बान करना, उसके लिए अशोक का चक्र दिया जाता है।

0: लगता है ये फिल्म सुनील दत्त और मीना कुमारी की थी। अच्छा ठीक है, वो तो कर लेंगे थोड़ी देर के बाद इसकी तस्दीक, लेकिन समिन हमने देखना है कि अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर वो कौन सा कलाम लेकर आई हैं।
1: टूट जाए ना भरम होंठ हिलाऊं कैसे, टूट जाए ना भरम होंठ हिलाऊं कैसे, हाल जैसा भी है लोगों को सुनाऊं कैसे, खुश्क आंखों से भी अश्कों की महक आती है, खुश्क आंखों से भी अश्कों की महक आती है, मैं तेरे गम को जमाने से छुपाऊं कैसे, तेरी सूरत ही मेरी आंख का सरमाया है, तेरी सूरत ही मेरी आंख का सरमाया है, तेरे चेहरे से निगाहों को हटाऊं कैसे, तू ही बतला मेरी यादों को भुलाने वाले, मैं तेरी याद को इस दिल से भुलाऊं कैसे, फूल होता तो तेरे दर पे सजा भी रहता, जख्म लेकर तेरी दहलीज पे आऊं कैसे, आईना मांद पड़े सांस भी लेने से अदीम, इतना नाजुक हो ताल्लुक तो निभाऊं कैसे, टूट जाए ना भरम होंठ हिलाऊं कैसे, हाल जैसा भी है लोगों को सुनाऊं कैसे। थैंक यू परवीन जी, अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा, लोगों को सुनाऊं कैसे।

0: Fever on air.
1: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात. भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज. अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब. शम्मा हूँ नई नई जलूंगी

जो हमें अच्छा लगता है, चले वालों को धक्का लगता है, चाहे कोई भी मैदान हो जब घूमता है बल्ला तो बस छक्का लगता है। कोई रोक के तो सही ना, काम उसका तमाम हो जाए, या तो काम है सकर के नाम हो जाए, या तो नाम है सकर के काम हो जाए।

0: ऐसे चलते हैं जैसे होते गुलेल हम।
1: I do what I like, I do what I do, कर ले कुछ तू क्यों देखे मेरा मुंह, जब करते हैं aim तो करते ना miss, check my fizz, check my fizz.